0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে আকৰ্ষতা সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक

0: 0 4 5 3 5 2 8.
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপনার সৈতে।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान था। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए।

0: बेटा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
3: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन

0: पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा

0: पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगिहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौर

0: लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्मी नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी,
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी,
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम
1: आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, आप बहुत धन्यवाद।
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
11: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
5: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
11: कैसे हो सकता है?
5: आया था
11: राजा, नकली हीरा तो सकता है,
5: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
11: राजा
5: सभी ने बोला कि नकली है।
10: महाराज की
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?

0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल

0: भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं।
1: उमंग राष्ट्रीय शैक्षिक गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रयोजित अनुष्ठानटी শুনিলে।

नमस्कार परागमाला लाइव में मैं अस्मिता आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज है 5 जून और आज का दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में और उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में। तो सुनते रहिए परागमाला लाइव।

प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण जलवायु स्वच्छता प्रदूषण तथा वृक्ष सभी को मिलाकर बनता है और ये सभी यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उससे प्रभावित करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

0: देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं प्रयोगशाला जांच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाइए।
1: RRIH भेटापाड़ा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: परागमला लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास या कह ले कि जो हमारे चारों ओर हैं, वही आवरण का मतलब है जो हम चारों ओर से जिसे जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना पर्यावरण को प्रभावित करती है। मनुष्य की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना पड़ता है।

आज ही अपने स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज

0: प्राप्त कर सकते हैं निशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जांच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल है। जबकि पर्यावरण के अजैविक संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानी, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती और संपादित होती है।

आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह जगह घने वृक्ष काटकर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। इतना ही नहीं, जहां वाहनों की धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है,

जिसके कारण अनेक बीमारियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। अतः आइए इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प करें कि हम ना ही पर्यावरण और प्रकृति के खिलाफ कोई भी कार्य करेंगे, बल्कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर तथा लोगों में जागरूकता फैलाकर पर्यावरण को बचाएंगे और एक इको फ्रेंडली पर्यावरण का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं अस्मिता परागमाला लाइव से लेती हूँ विदा। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছে এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত, মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত আৰু 729 কিলোহাৰ্টজত। খন্তেক পাছতে 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: At 5.25%.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी

0: आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। এতিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে মই জিন্তী ৰাণী ডেকা। এতিয়াৰ ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা 12গৰাকী মন্ত্ৰীৰ আজি শপত গ্ৰহণ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। পৃথিৱী আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বিশ্বজুৰি এই দিৱস পালন। কাছাৰৰ আৰিকাটিপুৰৰ দখলীকৃত ভূমিত আজি জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু লৰাৰ 18 বছৰ অনূৰ্ধ এছিয়া কাপ হকী টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমি ফাইনেলত আজি ভাৰত আৰু পাকিস্তান মুখামুখি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা 12গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। খানাপাৰাৰ জ্যোতিবিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত দিনৰ 12:45 হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই নতুন মন্ত্ৰীসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাব। আমাৰ আগৰ বাতৰিটোৱে কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা এন ডি এৰ 12গৰাকী বিধায়কৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। ইয়াৰে 11গৰাকী বিজেপিৰ আৰু এগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ। সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্ৰীসভাত গোলকগঞ্জৰ অশ্বিনী ৰয় চৰকাৰ, ঢেকিয়াজুলিৰ অশোক সিংহল, টিংখাঙৰ বিমল বৰা, তামোলপুৰৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, নলবাৰীৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, লক্ষীপুৰৰ কৌশিক ৰায়, কলিয়াবৰৰ কেশৱ মহন্ত, পাথাৰকান্দিৰ কৃষ্ণেন্দু পাল, মঙলদৈৰ নীলিমা দেৱী, জাগিৰোডৰ পীযুষ হাজৰিকা, ধেমাজিৰ ডাঃ ৰমেশ পেগু আৰু ডিমৌৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে স্থান লাভ কৰিছে। নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মঙলদৈৰ বিধায়িকা নীলিমা দেৱীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে।
3: অনুভৱ মানে এইটো অপ্ৰত্যাশা বুলি যে কয়, মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰি বিধায়িকা হলেও কিন্তু মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰি বহুত আশাও কৰা নাছিলোঁ। যি সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব, মানুহে কৈ আছিল আপুনি পাব পাব লাগে, কিবা কৈছে না নাই কাৰোবাক, বিভিন্ন ৰাইজৰ মতামত আছিল, কিন্তু বিচাৰি লৈ যা পাম এইটো কেতিয়াও হয় নহয়। দলৰ দায়িত্ব হিচাপে 32 বছৰ দলৰ কাম কৰিলোঁ। এইবাৰ মঙলদৈ ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদত, মানে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত যেনেধৰণে বিধায়িকা হ'ল, ভাবিছিলোঁ মঙল সমষ্টিৰ কামখিনিকে বিধায়িকা হিচাপে কৰিম। মন্ত্ৰিত্বটো এটা বেলেগ বস্তু, গতিকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সিদ্ধান্ত মই আন্তরিকতায় গ্রহণ করছো, আর তো সিদ্ধান্ত সদায় রাইজে গ্রহণ করা আমি ময়ো করো।

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে এক বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसे रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल का 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374

बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग

0: आरंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियाँ और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
6: लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में

0: सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

काडौँ नेली जुनल रोहाङ बिरतार्जिकठा मिनिस्टर के हय डॉक्टर हिमन्त विश्व शर्मा पेन पिनी आसाम केबिनेट मिनिस्टर किमी बांक्रेहनी आतुमाफान सेमे पदेंपनलो खानापारा ज्योति विष्णु इंटरनेशनल काला मंदिर अलोंग अनेलोपर फाइ क्रेहनी रा मिनिट फ्लिकेर अफो अपर पेन कापिडोची गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पेनसे आरपो किमी आफान सेमे पदेंगलो मिनिस्टर के हय डॉक्टर शर्मा पेंसे पतुमी बांक्रेनी एनडीए एमएलए तुमाफान मिनिस्टर आं हय किमी केपेक पंचायफान लामथी बांगडाग्लो बांक्रेनी मिनिस्टर आपु किमी आंबोंग बांक्री सीके बीजेपी लपेन इनुत के असम गना परिषद असम यापु पुसे पचिनीलो मिनिस्टर आपु किमी केलोंगडुन के कोलागंज कंसिस्टेंसी पेन के हायाबांग अश्विनी रॉय सरकार तेकिया जुली अशोक सिंहल टिंखंग बिमल बोरो बोरा तमुलपुर विश्वजित दैमारी नलबारी जयंता माला बरुआ लखीपुर कौशिक रॉय कलियाबर केशव महंत पाथारकंदी कृष्णेन्दु पाल मंगलदय नीलिम देवी जागरूत पीयूष हजरिका धेमाजी डॉक्टर रोनस पेगु लपेन डिमो सुसंता बोरा गोहाइन अतुम हेलो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हिंदपेन असम स्कीम असम गवर्नमेंट स्कीम किलोंग जी अफान आधार लपेन बैंक अकाउंट किलिंग केनांग सट पुसी लामथी बचिनीलो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हिंदपेन कॉलेज प्रिंसिपल लपेन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अफानता लासवालाम लोकेदो पेन पचिनी पंथांगलो मासल रेहाय आसनि मुख्यमंत्री निजुत आसनि लपेन मुख्यमंत्री बाबू आसनि अबार साइखिमे केलंगनजिया फान आधार कार्ड रेंग एटनांजि लपेन बैंक अकाउंट आधार नम्बर लिंक पामेनांजि पुता लामथि पचिनी कचारलि आरि सुनिमसो तुम आधार पोर्टल लंग रेंग एटमा

नामपी नामदूर ठेंगपी ठेंगफ्रांग रायकोम नांगजी लपेन की पांगचू नांगजी अथिमा नामपी नामदूर लपेन ठेंगपी ठेंगफ्रांग हेलो तुमन किमी किवानाबा ठेंगपी ठेंगफ्रांग हेलो ठेंग मेलांग इकिवान पियाबा नामपी नामदूर लपेन ठेंगपी ठेंगफ्रांग दुतिक अनसे मोनी लपेन किरेंग एन अपी अंता दु उनचजी लाहेनलो इरोंगा ठेंगपी चोरलोते रोंगकेबा ठेंगपी आरोंग इथु नांगजी पिनी नांगली ठेंगपी ठेंगफ्रांग रायकोमलोते पिनापकी ठेंगपी ठेंगफ्रांग से नांगली फान नांग रायकोमपो

बे आकाशवाणी गुवाहाटी मावाहुदालय गिबि गिबि बयनिसिम सिबिनाय खुलुमनायजों गोजोन बेलासिनि काम हामलायनाय बावहोनानै दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सन्जि बर'आ। गिबि मन्त्री डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा दैदिनै आसाम मन्त्री सभायाव जायगा मोननाय साजिनि मन्त्री बिथांमोना दिनै समायखिरालायै खानापारानि ज्योति विष्णु मुलुगनाङारि गोसोम मन्दिराव साननि 12:45 जानाय हाबाफारियाव हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गोदान मन्त्रीफोरखौ समायखिरा बिलाइ फरायहोयो। गिबि मन्त्री डॉ शर्माया मैया फेहेरनाय मन्त्री सभायाव जायगा मोननाय एनडीएनि साजिनै एमएलएफोरनि मुंखौ थोंजोङै समाजारि बिजोङाव फोसाव बेनिनो साजिनैया बीजेपी आरो सासेया एजेपिनि फेहेरनाय मन्त्री सभा गोलगंजनि आसिनि राय सरकार धेकियाजुलिनि अशोक सिंहाल तिंखांनि बिमल बरा तमलपुरनि विश्वजित दैमारी नलबारीनि जयन्तमल्ल बरुवा लक्ष्मीपुरनि कौशिक राय कलियाबरनि एमएलए केशव महन्त पाथारकान्दिनि कृष्णेन्दु पाल मंगलदैनि नीलिमा देवी जागीरदनि पियुष हाजरिका धेमाजिनि डॉ अनुज बेगो आरो डिमनि सुशांत बरगहाया जायगा मोननो हादों। दिनै मुलुगनां आबहावा सान मुलुग आरो मिथिंगाखौ रैखाथिनि थाखाय आबहावा सोमोन्दै मावफुंनायनि राहा आजावनायनि थाखाय मुलुगनाङै सांग्रांथिनि सोमजिहोनायनि थांखिजों बे सानखौ फालिनाय जायो। 1973 मायथाइनिफ्राय राष्ट्रसंघनि आबहावानि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बोसोरफ्रोमबो 5 जुनाव बे सानखौ फालिबोनाय थाबोदों। बे बारनि साननि गुबै मन्त्रा जाबाय मिथिंगानिफ्राय थुलुंगा मोननाय जोंनि बोथोरनि आरो जोंनि इयुननि थाखाय। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बायदिसिना हाबाफारिजों सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथानफ्रावबो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। चिरां जिल्लानि हाग्रा बिफाना भारत भुटान सिमनानि देवस्रि रायपुर सिंहनाजार हादोरारि पार्कनि सेरफोराव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जर'खा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो 5 लाख बिफां फुलि गायनो थिरांथा लायो। दिनै हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफानि मावफुं सोद्रोमा पानीराम ब्रह्मआबो नुजाथियो। गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि सिङाव मावफुंजानाय सरकारि आसनिफोरनि खाबु मोनफुंनायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि आधार कार्ड आरो आधारजों फोनांजाबनो बेंक एकाउन्टखौ कम्पालसरि खालामदों। बेनि सायाव गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरिनिफ्राय मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्टार आरो फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोरनो लाइजाम दैथायहरनाय जादों। लाइजामाव मुंख'नाय बायदिब्ला मासुल रेहाय आसनि मुख्यमंत्री निजुद मायना आसनि आरो मुख्यमंत्री निजुद बाबू आसनिनि खाबु मोननो थाखाय फरायसाफोरनि आधार कार्ड आरो आधारजों बेंक एकाउन्ट फोनांजाबनाया गोनांथार खालामदों। गलाघाट जिल्लानि उरियंघाटआव इभिक्सन अभियाननि उनाव उदां जानाय ओनसोलखौ अरनबारि दावबायथिलि आरो खामानि गैजायैखौ गायसंनायनि थाखाय खुरुपथार बियाबनि एमएलए विश्वजित फुकननि दैदेननायाव जर'खा राहा लानाय जादों। बेबायदि रेंमा ओनसोलाव प्राय 5000 नाहरफुलि गायनानै जुबिनगार नाहर पार्क खालामनो थांखि लानाय जादों। कामरूप जिल्लानि

मीन आइन सिफायनानै बुरलुं बुथुल दैमायाव ना फिसा आरो बिदै गोनां नाखौ हमनानै लाबोबाय थानाय ना हमगिरिफोरनि हेंथायै मीन बिफाननि बिथोनाव मोनसे जर'खा अभियान खालामनाय जादों। बे अभियाननि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननैसो ना हमनाय जे आरो सेन जब्द खालामनाय जादों। बिहारनि समान जिल्ला खुंथाय आरो रङागरा साहा बागिचानि बान्जायनायाव मैया खान्थि बादगै फाननाय जौ आरो होबथानायनि थाखाय सांग्रांथियारि मेलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिउ खुंनायनि मावबादानि सायाव मोनसे मेल खुंफुंनाय जायो। बिहारनि बिहारनि गोबां सुबुङा खान्थि बादगै जौनि फालांगि खालामबोदोंमोन। बे फालांगिखौ बन्द खालामनानै बेजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनो गुबुन जिउ खुंनायनि राहा लामानि सायाव जर'खायै मिथिहोनाय जायो। हाबाफारियाव बिहारनि समान जिल्लानि कमिशनार सबिता काकुटी कौरखौ हमफानानै सानैसो जर'खा सुबुं आरो जायगानि रायजोफ्राबो नुजाथियो। हादरनि सुबुं सानखा 2027 मायथाइयाव मोजाङै जाफुंसार होनाय थांखिजों खोला सालमारा मानकासार जिल्ला खुंथायनि बान्जायनायाव 2 जुननिफ्राय खुंफुंनाय गिबि खोलोबनि नखरनि फारिलाइ आरो नखर साननाय आयदाखौ जिल्ला खोलोबाव फोरोंथाय हाबाफारिनि जथुमनाया मैया थुंगियो। जिल्ला बेंगिरि मावख' खुंफुंनाय बे फोरोंथायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि मावदांसाफ्राबो बाहागो लायो। हौवासानि 18 बोसोर बैसोनि एसिया काप हकी टुर्नामेन्टनि सेमि फाइनेलाव दिनै भारतनि हेंथायै पाकिस्तानजों मोगा मोगि जागोन। गेलेनाया जापाननि काकामी गोहरा हकी स्टेडियामाव खुंफुंजागोन। फारसेथिं हिन्जावसानि 18 बोसोर बैसोनि एसिया कापनि सेमि फाइनेलाव दिनै भारतआ चीननि हेंथायै बाहागो लागोन। गुवाहाटीनि अर्जुन भोगेश्वर बरुवा गेलेमु थिलियाव फैगौ 7 जुननिफ्राय फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानडेस अन साइकेल हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। मुलुगनां बाइसाइकेल सान 2026नि 77थि खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। सुबुंफोरखौ मोनसे गोख्रों आरो गोहो जिउनि थाखाय थुलुंगाथाव खालामनाय थांखिजों भारत सरकारनि फिट इण्डिया अभियाननि सिङाव नेम बायदियै सानडेस अन साइकेल हाबाफारि खुंफुंजाबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दिनैनि बर' रादाबाबो एसेनोसै।

खुलुमबाय बे आगजबानी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फसंनाय जादों आगजबानी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो FM-नि 101.6 मेगाहार्ट्सआव बे फसंनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्स आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्सआवबो रिले खालामनानै फसंनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फसंनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं दिनै स्टुडिय'आव दङ आं नगेन दैमारि आरो आंजों लोगोसे दङ सन्जीव बर'आ दान्दिसुनानो नोंथांमोना जोंनि उननि गासै हाबाफारिखौ खोनानो मोनसिगोन

0: सेने फालिनाय जायो आबहावा गिज्रा जानाय मिथिंगानि खहा खालामनाय बुहुमनां बिदुंथाय बांनायखौ खमायनो नाजानायानो बे सानखौ फालिनायनि गुबै थांखि
1: बे आगोलबानि गुवाहाटी मुवा बहुदालाय जों दानिया फोसावनो लानाय जादों थुनलायारि आयदा जों दिनै बे आयदायाव नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों आगोलावनो फोसावखांनाय सेल्फ मेड रानि बर'आ गावनो माखासे खन्थाइफोर सुजुनानै आवरायनायखौ
2: आं सोंनो गोसो जायो खनले खनले अरजों सावग्लिजानाय उनावबो जिउमाया माबोरै जोनोम लाफिननो हायो मानसिनि गोहोआव आं सोंनो गोसो जायो अख्राङाव बिथिंग्रा मासे दाउआ माबोरै मोनदांनो हायो मोनद' बोथोरनि फाराग आं सोंनो गोसो जायो उन्दुलांनाय जरासे मेगना माबोरै नुनो हायो फुर्जा बेंनायनि सिमां आं सोंनो गोसो जायो साननि सिराङाव आन्दायग्रा मासे एम्फौआ हरनि खोमसियाव जान्जि फिदिं फिदिं माबोरै मोसाग्लांनो हायो आं सोंनो गोसो जायो बिमानि गोर्बोआव गु सान गु दान खुद्रि खुद्रि जोनोम लानाय खुदिया सासेया बोथोर सोलायनाय बादि गाब रुंगलांनाय बादि माबोरै फबसिनना दोननो हायो जोनोम बुब्लिनि गोथार मोन्दांथि आरो माबोरै बिसोर बन्दगाव दोनहरनो हायो बिमा अनसुलिनि खुद्रिनाय गाबनाय आरो मिनिनायफोरखौ बोथोरालाय बोथोर खासै दिनै सान्दुंब्ला गाबोन अखा दिनै दुफाङा बारजों बिखा मावहोदोंब्ला गाबोननो उदाङा सुग्लायहोगोन मावलिनाय थाइजौ बिबारनि मिनिनायजों दिनै गोलोम बोथोरा दुंखाव होदोंब्ला बैसोमुथिनि सोलेर गाबोननो दैज्लाङा अखा हादैजों सिदोब खालामफैगोन बिनि गोर्बो सना गाबनि माइ बिदांजों मेसेंनि दुब्लिया दिनै समायफ्लेदोंब्ला गोजां बोथोरनि हावाराव गाबोननो साथिख'गोन फोथारनि आगानफोर साननि उनाव दान दाननि उनाव बोसोर सम बाबेनगोन बोथोर थांगोन नोंबो आंबो बयबो बिदिनो सानसे रुंगलांगोन थेवबो आं सोंनो गोसो जायो बारसे गलापनि फाइलियानो माबोरै खुंहोनो हायो मोनसे संसार सान हर गाग्लिजा गाग्लिजा लोलाजेद्रा रांनाय दुब्रि हाग्राया मिनियै मिनियै माबोरै गोबानो हायो मेहेरफोरनि थरथिं आरो आंगो आंगो मोनदांनाय सानरिफोरानो माबोरै गावस्रा होनो हायो खाबथानानै दोननाय जरासे हां ब्रा ब्रायैनो खाबथानानै दोनजानाय सिमांफोर सिमांफ्रा एखम्बा अख्राङाव बिरो एखम्बा हायेनाव थाबायो आरो माब्लाबा मोसानि मेगनाव बागुरुम्बा मोसाग्लाङो नों बुङो आंहा गांखं गैया दाउजों बिरफानो आंहा जाहार गैया जिब जुनार फिनो आं दैमा नङा लैथोमायाव बोहैलांनो आं हाजो नङा मिथिंगाखौ गोबानो आं राजफोलेरनि बिगोमाबो नङा फोरजा माखाखौ खान्थि फोरोंनो बिसोरनो नोंखौ आंखौ बयखौबो आरो गोजौ दंफां फांसेनि दालाय हमै हमै सिमां नुनो थिनो गंसे सोहोरनि जाय सोहोराव थायो हायाव नांबायफेरै जिब एबा दैयाव सानस्रिफेरै ना आं बुङो फानजारिनि दाउआ अख्राङाव बिमायनि सिमांल' नुनो हायो नाथाय बियो मोगथां मुलुगनि अख्रांखौ गोबानो रोङा मुगानि बान्दा जानानै दाथा बे मुगानि राजफोलेरा फुर्जा खान्थि फोरोङा फुर्जायासो बेङो राजफोलेरखौ हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि निजिरायाबो खफ' जानानै जोमैजोंसो गोरोबहैफिनो एबा लैथोमानि खफ'आसो अखा जानानै मुलुगाव गिदिर फिसा माखासे दैमानि जोनोम होयो नों बुङो नङा नङा बिमानि गाराङासो फिसाखौ रायज्लायनो फोरोङो गासै मुलुगखौ सोमोन्दोआसो बेंनानै लाखियो आं बुङो नोंनि मुङै आं लुबैया गोदनायाव गाननो सना बिदां नोंनि मुङै आं लुबैया बिबारजों फुजिजानो आरो नोंनि मुङै आं माब्लाबाबो लुबैया गाब फुन्देनानै समायना खालामनाय खुगानि मोन्थोर बेखायनोथ' आंनि आंनि होननाय सोदोबा बिखा गंसे मानि बांग्रिं मावहोयो आरो खालाय जाहोयो असे असे मोदोमनाय मोनसे सोमोन्दो जेराव नोंबो आंबो माब्लाबाबो जों जानो हाया जायो आरो बिब्दिनो दोलेंजों खाबथाजानाय अखाफोर बायदि ब्रा ब्रायैनो खाबथानानै दोनजायो माखासे सिमां जाय सिमाङा बुलि होयो लुबैनाय हास्थायनाय नाजानाय आरो गाव फोथायथि बिहारे आमोखाया गदाय लाबोबावबायनो मालाय आमोखियासो बिहारि मोनबाय बे फंसेल' बाथ्रा आराव जादों गामि गामि बयनिबो खुगा खुगा गोसोनि गोजोननायजों सोरबाया मिनिखुमादों सोरबाया दुखु मोनफादों।

होनानै हस्रिख्राव हस्रिख्राव रंजागासिनो सोरबाबा लामा लामा सोरबाबा स्कुलाव बिमा बिफाफोराबो रंजानायजों गुस्थि लोमनो रोङाखै जेरैथिंबो हख्राव हसि जेन' सोरबा बिजाथिफोरासो एसेम्ब्लि एबा पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव देरहादों निउज रिपर्टारफ्राबो साफानि उनाव साफा बे नुथायफोरखौ निउज चेनेलाव दैथायगासिनो चेनेलखौ जेरै हागौ एरैनो मुजिथाव खालामनो नाजागासिनो बे निउजावनो मोनबाय सोरबा बर' गथ'नि मुंखौबो जिथि जायगा आवग्रिदों गिबियाव बर'ब्लाबो इंराजि मिडियामनिसो होनना सानदोंमोन नाथाय नङा बर' बिजोंनिनो बर' बिजोंजोंनो फरायबोनाय फरायसुलि निउजखौ नुनानै आं गोमोहाबदों गोसोआव गावनो गाव रंजाखांदों मानोना बर' बिजोंजों फरायनानै आगोलाव रावबो पजिसन लाखिनो हाफेराखैमोन बेनो गिबि थारैनो बेसेबा रंजाथाव मार जोंनि थाखायबो आंहाबो बर' बिजोंजोंनो फरायबोनायलाय गोसोआ देरगाखांदों निउजाव नुनानै गथ'खौबो सिनायहां सिनायहां मोन्दों ओनसोलनिनो गंसे प्राइभेट फरायसालिनि फरायसा ददेरे स्वर्गियारि गोसोआव फैहां फैहां जादों ददेरे ददेरे ददेरे अ सार सार टक टक टक सार सार दिनै नाइट डिउटि हस्पिटालनि इमार्जेन्सि चेम्बाराव दसे गोलांनानै दंमोन बे समावनो दर्जा बुफैनायखाय दर्जा खेवनानै नायहरब्लाथाय नुबाय नार्स सासे दरखौ मोखौ गसंनानै दं मा जाखो सिस्टार सार बेरामि सासे फैदों अर खामजानाय बेरामि हाखु दाखु ओंखारलांबाय आं बेरामिनि खाथि मोनहैब्लाथाय गुरलाब बागदावखांबाय आं बेरामिखौ सिनायबाय मुङा खबारि खाथियावनो बिजावजालि आरो बेवाय दंफायो फिसाय गैया खाथियाव बेरामिया आलौनायजों बाब्राबगासिनो बिनि न'आथ' आंनि क्वार्टार खाथियावनो प्रेसक्रिप्सन लिरनानै मुलि लायनो थिनहरना सिकित्सा खालामनायसै दान्दिसे उनाव मिथिना मोनबायदि मोदोमाव केरासिन लुनानै गावनो सावनानैसो लादों गावनो सावनानै लादों होनब्लाबो आं बारा गोमोथाव मोनाखिसै बर्मानि सिभिल हस्पिटालाव जयन जाफैनाया बोसोरसे खावसे बारलांबायमोन बेखिनि समाव क्वार्टाराव थानानै मेगनजों नुनाय माखासे जाथायफोरनि थाखायनो आं समखिखाङाखिसै खबारि खबारिया मैगं बेफारि बर्मानि बेलासिनि बाजाराव सानफ्रोमबो मैगं फानहैयो फुङाव खाथिनि गामिफोरनिफ्राय आरो माब्लाबा बाजारनिफ्राय बायस'नानै लायो गोथां मैगं सम सम खाथि खालानि बाजारफोरावबो फानहैबायो बिब्दिनो जा गरसे गरनै मोनो बेजोंनो थिलेब लेब न'खरखौ सालायो गावहा गथ' गथाय सानै देरसिना फिसाज्ला आरो दुइसिना फिसाजो फिसाज्लानि बैसोआ 7 बोसोरसो जागोन आरो फिसाजोआ 3 बोसोरसो जागोन 3 बोसोरनि खुदियाखौ बिबैनि सेराव होलांनानै मैगं बेफार खालामहैयो खबारिया आथिखालाव बर' हिन्जावफोराबो बेफार खालामनो सोलोंनाया गोग्गाथाव बाथ्रा हौवाफोरजों समान समानै हिन्जावफोराबो आगान सुरफालांनायनि मोजां नेरसोन होमब्लाबो नाथाय खबारिया गाव गोसो जानानै ओंखाराखै न'खरनि हालसाल आरो उदैनि थाखायसो बेबायदि गिदिं गिदिं मैगं बेफार खालामनांगौ जादों फिसाय थासेयावबो खबारिनि बेबायदि जानांनाया दुखुनांथाव थेवबो मेगनाव मोदैनि बान्दोखौ थेनानै गोसोआव दुखुनि थफ्लाखौ दाबसेयाव दोन्थ'नानैब्लाबो बियो दावहा नांनो नङाब्लादि गथ' सानैया खबारिया मालायखौ दाय होनायनिख्रुइ गावनि खाफालखौनो दुसियो बियो सानो बेबादि फिसायालाय थानायनिख्रुइ गैयियासो साबसिन बिदिब्लालाय फिसायखौ मानोथो नांगौ सम सम खबारिया गोसो बायग्लियो नाथाय हमथाफिनो फिसाया खामानि मोनसे मावा न'खरनि बिसि फिसानि जेबो उदिस्लाया सानफ्रोमबो खालि जौ सेरेबजोंल' गोदोफबनानै थायो सोरांब्लानो न'खरनिफ्राय ओंखारलाङो मालायनि जुवा गेलेनायफोरजों थाफाहैयो जौ सेरेब जागायनानै होग्रा जायो बिसोरजों सानफाथो लो लोंफानानै फेनानै फैयो बिदिब्लाबो खबारिया बांद्राय खेरखेराय नांनाय नङामोन फिसाया जेरै जायो जेरै थायो थाथोंखौनो सानोमोन बुंब्लाबोथ' खोथा लाखाया नाथाय जौ फेनानै हराव माब्लाबा माब्लाबा न'खराव दुम दाखाल खालामफैनायनि थाखायसो खबारिया सहायनो हाया हाया मोनखाङो माबोरैथो सहायनो हानो फालाय सानाव खस्थ'यै बेफार खालामनो हाथाय बाजार गिदिंनानै हराव फिसायजों बुजानांगौ रायजानांगौ जायोब्ला सोरथो सहायनो खबारिया बेबादिखौ लुबैयाखैमोन बियो सानोमोन अलसिया फिसाय मोनबायब्लाबो मोनबाय खाफालनि लिरनाय जौ फाग्ला जायो जाथोंसैमोन नाथाय दाय गैया फोदो गैया आंनि सायाव मानो एसेबां उदखारि बांद्राय खस्थ' मोनोब्ला सम सम बियो गावखौनो फोथैनानै लानो सानो नाथाय गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै थाफिनो फिसाज्लाया थाखोनै मोनबाय खाथिनि एल पि स्कुलावनो फरायो
फिसाजा।

नाथाय दाबो बिमाजोंनो गुलि गुलि बेफाराव थांबोला बिमाजों थांफानो खुद्रियो बिमाया होमब्ला बुरखायनानै गालांनांगौ जायो खुद्रिनानै बिमाखौ बुंहरो आय आय होमब्ला आंनो चकलेट गिदिरथार लाबोदे बिमाया अब्ला जागोन दे आय सना होननानै फिसाजोनो खावनायाव सब खुदुमो गोदोनानि फास्राखौ आखाइजों फाफ्लि साथिं हरनानै सिथ्लायाव दिहुनना दोननाय गिदिर गिदिर मना गांनैसोखौ लानानै ब्लड ओंखारलाङो बियो जेन सासे दावहारु आखाइयाव हाथियार लानानै ओंखारलांदों दावहाथिलियाव बे दावहाया उदै थाइसे फिसिनायनि दावहा बिमा ओंखारलांनायनि उनाव उन्दैया बिबैजों खुद्रियो बिबैया सल'बाथा खिन्थानानै फिसौखौ बुरखायो बोराया थारुन गायबाय थानायाव सियाला फैनानै थगायनाय सल'बाथाखौ खोनासंनानै बियो जोबोर खुसि मोनो उनाव दर्जा फांथेनानै बोराया सियालफोरखौ माफा माफा बुथारनायखौ खिन्थानाय खोनाब्ला बियो रंजाखाङो बिब्दिनो बिबैया बिखौ बुरखायना लाखियोमोन उनाव बिमाया बेफारनिफ्राय मोनफैब्ला खारलांनानै बिमाजों बामजाहैयो आय आय आं चकलेट गिदिर लाबोनो खिन्थानाया लाबोदों ना लाबोआखै बिमाया होमब्ला चकलेट गरनै दिहुननानै फिसाजोनि आखाइयाव होयो अब्ला फिसाजोआ खुद्रिना बुङो उ बेलाय माथो गिदिरानो नङा आं जाया आं गिदिरसो लाबोनो थिननाया होमब्ला बिमाया खर'आव बिलिरनानै बुरखायो नङा आय माने दखानदारानो दिनै गिदिर बानायाखैनो गिदिर बानायब्ला दखानदारखौ पुलिसा हमोनो ओंखायनो फिसासो बानायदों देनां गिदिर बानायब्ला लाबोगोन दे आय सना बिदि बुंनानै फिसाजोखौ खावलायाव सब खुदुमो बेनो बिमानि अननाय होमब्लासो चकलेटखौ लासैनो आजावो बियो खबारिया न'आव फिसाय गैयाब्लाबो गोसोखौ दानिया रेजें मोनसै सानावथ' गावबो बांसिन बेफारावसो थांखायो फिसायाबो सानफा थोलो न'आव थाखाया हराव नाथाय बियो फिसायनि उदखारि रायग्लुंनाय बुग्लुंनायनिफ्राय बारग'नो राहा गैया बेखायनो फिसाया न'निफ्राय ओंखारलांब्लाबो हामगौमोन होनना सम सम बियो सानो ओरैनोब्लाबो फिसाय थानानैबो सुखुनि सोलायै जारलासो सहायनांदों सोरजोंबा मेघालयफोराव खामानि मावनो थांफानानै थाहैब्लाबो जासै होनना गोसोआव सानो हर समाव जे फिसाय फैबाय होमब्लानो बिनि गोसोआव गोसोम जोमै दाखाया साग्लोब फैयो हराव फिसाया न' लायाब्लासो सानफाथोलो मेंग्लिनाय देहाजों गोजोनै उन्दुलांनो हायो खबारिया माब्लाबा फिसाजोखौ गोबानानै मोदै हुगारै हुगारै सानो आरो बाव बेसे गोबाव सहायबावनांगोन बेबादि उदखारि समनि सोरखिजों गिदिंफानानै ददेरेया माब्लाबानो स्कुलाव थांनो रोंनाय जाबाय ददेरेनि बिमायं थामहिनबा बिफानि बिदाया ओनसोलनिनो गंसे प्राइभेट फरायसालियाव मुं थिसननानै होदों बे फरायसालिया बर' बिजोंनि फरायसालि आथिखालाव गोबां बिमा बिफायानो गाव गावनि गथ' गथायखौ इंराजि मिडियामावसो फरायहोयो बिसोरनि सानस्रिखौ सोलायहोनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो बेबादि प्राइभेट फरायसालि जोनोम मोन्दों बे फरायसालियावनो फरायनो ददेरेया खाबु मोन्दों बिमायंआ LP स्कुलनि फोरोंगिरि गावहा फिसाज्ला सासेल' उन सिगां रावबो गैलिया उन्दैनिफ्रायनो ददेरेखौ जोबोर अनसोयो उन्दैयावनो बिनि मेलेमखौ बिमायंआ सिनायखादोंमोन मोजां लामा दिन्थिनो हायोब्ला मोजां जालांगोन होनना सानखांनो हादोंमोन बेनिखायनो बिफानि जौ फाग्ला आरो बिमानि खस्थ'खौ नुनानै बिमायंआनो ददेरेखौ फरायहैनायनि बिबान बानस'ना लानायसै खबारिया फुङावनो ओंखाम संनानै फिसाजोखौ थुखैयो थुखैखांनानै खर'आव मोदोमाव थाव फुननानै खाफालाव फोथा गोसोम आसिजों फुनना होयो बेनिफ्राय थोरसियाव ओंखाम लानानै फिसाजोनो बुरखाय बुरखाय खब'फा खब'फा दौनानै होयो ददेरेया खुद्रि खुद्रि बा बांसिन जायो ओंखाम जाहोखांनानै स्कुलनि ड्रेसखौ गानहोनानै स्कुल बेगखौ लानानै फिसाजोखौ बिमायंमोननाव दोनहरो बेनिफ्राय गावहाबो बेफाराव ओंखारलाङो ददेरेया बिदाजों आखाइयाव हमफानानै स्रें स्रें स्कुलाव थांफायो स्कुलाबो गोजान नङा न'निफ्राय आगाननैसो थाबायब्लानो मोनो बर्मा सिभिल हस्पिटालनिफ्राय ट्रान्सफार जानानै क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव जयन जाफैनाय समाव ददेरेया थाखोथामाव फरायोमोन दिनै 7 बोसोर जालांबाय बेखिनि समाव खबारिनि संसारखौ सम सम गोसोखांफ्लाङोमोनब्लाबो फिसाजो ददेरेनि महरा आंनि गोसोनि केमेरायाव गैलियामोन दायो बिनि महराबो द्लामैनो सोलायबाय मेट्रिक आन्जादाव पजिसन मोननायखाय TV पर्दायाव ददेरेखौ नुनो मोन्दों ददेरेया खुसिब्लाबो मेगनाव मोदै ओंखारदों रिपर्टारनि सिगाङाव बियो गाब्रुनाय गारांजों बुंदों दिनै आइ आफाया थांनानै थानायमोनब्ला आफाया रंजायामोनब्लाबो आइया बेसेदि रंजागौमोन आइ आफा गैयाब्लाबो

0: होनानो दिनै आंखौ बिमा बिफाबादि अननाय होनानै लामा दिन्थिनायनि थाखायसो बिब्दि रिजाल्ट खालामनो हाबाय।
1: एसे सम नोंथांमोना दिनैनि थुनलायारि आयदानि जोबथारनायाव आगोलावनो फोसावखांनाय देतसुं स्वर्गियारिया गावनो सुंद' सल' सुजुनानै फरायथिनायखौ खोनानो मोनबाय। सुंद' सल'नि मुङा समनि सोरखि। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि थुनलायारि आयदायाबो एसेनोसै। मेलेरिया बेरामा रोखोमसे गिलु बालु बेराम। नोंथाङा खनले खनले लोमजाबाय थायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै थैखौ आनजाद खालामहो। उन्दुनाय समाव थाम्फै अरजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नेट एबा मुसारि सोंनानै उन्दुनो दाबाव। लोंनाय दैखौ फिल्टार खालामनानै एबा सरनानै ग्लब ग्लब गोदौजासे फुदुंना गुसु खालामनानैसो लोंनांगौ। मेलेरिया बेरामा साग्लोबनो हायैबादि न'खरनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखि आरो जानाय लोंनायाव अरायबो सांग्रां जा। बे आगाजबानि गुवाहाटी मुवाबाहु दानिया बोसोनो लानाय जादों मेथाइनि आयदा। आयदानि गिबियावनो जों नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों सुजुमा दैमारिनि गाराङाव नैबेदोंसे गोदान मेथाइखौ। बे हर गेजेराव मेथाइनि बाथ्रा थिलिसर बर' नार्जि।

0: नोंथांमोना बे फोसावनायखौ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबा हुदालायनि मिडिया मुभनि 411.5 मिटार आरो 101.6 मेगा हार्सआव आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगा हार्स आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगासावबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं। मेथाइनि आयदायावनो दानि खोनासंदो परमेश्वर रामसारि आरो लोगोफोरनि गोनाङाव नैबे दोंसे खुगा मेथाइखौ।
1: दानायाव गेरिं लुनायाव गेरिं बर

0: Dana yau gering, luna yau gering, borosi klapera. Dana yau gering, luna yau gering, borosi klapera.
1: बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु गाबोननि फसंगनाय दा गाबोन नोंथांमोना जोंनि सामफ्रामबो थाखानाय खायसे आदाफोरजोंनो रंजालि आफादनि आयदायाव आगोलावनो फोसावखांनाय बाङालिपारा बिथराय आफादनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि रिंगु दामसाखौ खोनानो मोनगोन। बेखौ दैदेनदों दावाराम बर'आ। लोगोसे मेथाइनि आयदायाव रीता बर'नि गोनाङाव गोदान मेथाइ आरो गुनुबति बसुमतारिनि गोनाङाव माखासे खरा गोनां होननाय खुगा मेथाइफोर खोनानो मोनगोन। गाबोननि फसंगनाय आयदा एसेनोसै। मेथाइनि आयदायावनो फैफिनदो। बे आयदायावनो जों दायो नोंथांमोननो जोबथा मेथाइ महरै जुजुमा दैमानि गानाङाव नैबे गुबुनजोंसे गोदान मेथाइखौ खोनासंहोनो लानाय जादों। मेथाइनि बाथ्रा बिजय कुमार गयारी।

एसेसा नोंथांमोना मेथाइनि आयदानि जोबथानायाव सुजुमा दैमानि गानाव दोंसे गोदान मेथाइ खोनामोनबाय। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै। बेयो आगाजबानि गुवाहाटी मुवाबाहु समजानानै फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अन्नाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन बहनानै जोंनि दिनैनि बर' आबादखौ एसेयावनो थुंगिनाय जाबाय। गोजोन्थों।